0: पुरी का बेस्ट प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट वीटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चॉइस कोदो को डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

बायोनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बायोनेट अब सबै कनेक्टेड।

0: वायरनेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद करता सुई इंटरनेट पैकेज नया जड़ान को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागी एक महीना फ्री इंटरनेट वायरनेट अब सब कनेक्टेड
1: काठमाडौँ डायबिटिज एन्ड थाइराइड सेन्टर जावलाखेल ललितपुरमा कार्यरत मधुमेह थाइराइड तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दीप चन्द्र श्रेष्ठ घोराही 15 सड़क विभाग रोड स्थित दिव्य फार्मेसीमा आउनुहुने भएकाले सम्बन्धित रोगका बिरामीहरूले समयमै नाम दर्ता गराई स्वास्थ्य लाभ लिनुहोस्।
2: डाक्टरद्वारा दिइने सेवाहरू
1: सुगर रोग सम्बन्धी उपचार,
2: हर्मोन सम्बन्धी समस्याको उपचार,
1: लामो समयदेखि थाइराइड सुगर तथा सम्पूर्ण हर्मोन सम्बन्धी समस्यामा रहेका बिरामीहरूको सफल उपचार सेवा
2: पनि नाम दर्ता गर्न
3: बिरामी जाँच हुने मिति यही भदौ 28 गते आइतबार।
4: सम्पर्क दिव्य फार्मेसी घोराई 15 सड़क विभाग रोड दाङ। फोन नम्बर 082-595-410, मोबाइल नम्बर 98478-28913 र 98095-12871।

0: बेस्ट प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट भिटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

युग माया को बैरी सघन संसार तिमी मेरो मा तिम्रो मुना मदन जस्तो युग युग माया को बैरी सघन

0: 야, 이거 나 놓쳐. 아이야야야야.
1: 다 초비로 버시라코. 오사디 거나 자는 분이고 많네 히나.
0: 아이야, 아스티 바꿔도 오사디 거리고. 비스코 운니스 바꿔 히나.
1: 잡아야 돼 오사디 거래 버치 됐어요 또 운차.
0: 야, 앞으로 해 두키로 모르는 거 있어 큐. 뒤에 보는 나 가나 좀 뭐.
1: 고라히 코 호스피털 로드 마라히 코 사그마타 젠털 클리닉 마 자는 나. 아니 자네 니코.
2: 하타쿠 사태 딘 던타록 비스석에 도와라 시와 프로단 거디 아이쿠 사그마타 젠털 클리닉.
3: 던타록 타타 묵성먼디 사마세쿠 라기 바히르 자네 나파르니. 전수아스티 가릴레 당 도와라. सुचिकित्सा क्लिनिक
4: सगरमाथा डेंटल क्लिनिक मा लामो समय अनुभव प्राप्त गर्नु भएका डाक्टर मोनिका थापा छेत्री सीएमसी टीयू डेंटल सर्जन द्वारा प्रत्येक दिन बिरामी जाँच भइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौं।
5: मुखको शल्यक्रिया, दाँतको एक्सरे सेवा, दाँत सफा गर्ने र टल्काउने, नमिलेको बाङ्गटिङ्गर दाँत मिलाउने, दाँत नभएको ठाउँमा कृत्रिम दाँत राख्ने, बनाउने, भाँचिएको दाँतमा झिक्नु नपर्ने गरी दाँत लगाउने, किराले खाएको दाँत भर्ने, दाँतको रङ भर्ने, चाँदी भर्ने, दाँत निकाल्ने, मुखमा घाउ खटिरा आउने, गिजाबाट रगत आउने, गिजा सुन्निने, मुख गन्हाउने, मुखमा सेतो धब्बा आउने लगायतका समस्याहरूको भरपर्दो
6: सगरमाथा डेंटल क्लिनिक हॉस्पिटल रोड घोराई दान।
3: संपर्क फोन नंबर 082-5-63-027
6: 98-41-68-46।
3: नियमित रूपले दन्त परीक्षण गराउनुहोस् र दिनको दुई पटक अनिवार्य ब्रश गरी सधैं स्वस्थ रहनुहोस्। सगरमाथा डेंटल क्लिनिक द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
7: मध्यपश्चिम टाइम चेक। यति बेला रात्रिको 10 बजेको छ।